0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774
2: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 8:30.

0: मूव फॉर 10 आ गया है दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
2: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
3: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
2: This is Inspire FM.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.

अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर लें, और अगर सिक्योरिटी अलार्म मौजूद है तो इसे भी ऑन कर दें, और तसल्ली कर लें कि आपका घर चोरों से महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: there is no God but you. This is how our Prophet sallallahu alaihi wasallam pursued the pleasure of Allah azza wa jal, by praising Him and worshipping Him in a way by Allah that no one could ever do, ya salam. And this is how his heart connected with Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Assalamu alaikum. You have been listening to the Daily Imam Booster. Stay tuned to Inspire 105.1 FM for more inspiring talks and lectures.
2: Move 410 aa gaya hai. This girl can ka naya challenge jisme har koi shamil ho sakta hai. Bas 10 minute move kare mahine mein 10 dafa. Mujhe to ab zyada hi energy feel ho rahi hai aur confidence bhi.
3: Ab meri neend bhi pehle se behtar hai. सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज़ वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं, जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें. मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. पूरे मुल्क की ख़वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं. आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10.
4: Assalamu alaikum, my name is Hamza Fletcher. I hope you're enjoying yourself. Keep tuned in to Inspire on 105.1 FM.

0: मूल था। आप सहाबा की ज़िंदगी के जितने भी मामूलात थे, उन मामूलात में आयतुल कुर्सी की तिलावत करना, इसे पढ़ना शामिल था। और उन्हीं की तालीमात और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इरशादात जो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं, बुजुर्गान मशाइख अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदे, बरगजीदा बंदे, पारसा मुत्तकी, उन्हीं की ज़िंदगी का ये मामूल है। फिर वो अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने अहले खाना को आयतुल कुर्सी की तिलावत करने की तालीम देते हैं। हर घर के अंदर रहनुमा, वालिदैन, नगेबान अपने मातहतों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने अहले खानों को आयतुल कुर्सी की तिलावत की आदत डालें, तालीम दें, क्योंकि हमारे दीन इस्लाम ने इस आया पाक की तिलावत में बेशुमार बरकतें हमें अता फरमाई हैं, बेशुमार फ़ायदे हमको अता फरमाए हैं। जब हम सफ़र का आगाज़ करें तो हमारे सफ़र का आगाज़ दुआए सफ़र के साथ साथ आयतुल कुर्सी की तिलावत, अपनी ज़िंदगी का, अपने सफ़र का मामूल होना चाहिए। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत का मामूल होना चाहिए। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत का मामूल होना चाहिए। जब कोई इस आयतुल कुर्सी की तिलावत को अपना मामूल बना लेगा, वो हर किस्म की आफात व बलिया से महफूज हो जाएगा। दुनिया और आखरत में उसके लिए बेशुमार फवायद उसको अता किए जाएंगे। एक बंदा मोमिन जिन्नात और लोगों के शर से वो महफूज हो जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस आया पाक आयतुल कुर्सी की तिलावत, इसे अपनी ज़िंदगी की आदत बनाने और इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद और समराज से अपनी खाली जोड़ियों को भरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का हामी और नासर हो। वमा अलैया इल्ला अल-बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. That glad tidings are for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. before you feel tired. Pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
6: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
7: Right, cheers.
5: Think. Don't drive tired.
8: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
9: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
0: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں, کبھی جھکتی نہیں, کبھی مٹتی نہیں. اعتدال, حریت فکر اور سچائی کا پرچم. آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز, قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں, حق کی آواز. ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے, ذہنوں کو روشن کرے. ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.

आजकल लोग सड़कों पर चलते फिरते चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें फरोख्त करते हैं। चोरी की चीज़ें खरीदने का मतलब आप इस चोरी में शामिल हैं, इसलिए चलते फिरते लोगों से चीज़ें हरगिज ना खरीदें, बल्कि ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को आगाह करें। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: Make your intention clear right from the heart.
1: Move for 10 आ गया है. This girl can का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है. बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा. मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी.
2: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है. सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक. कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं. जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें. मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं. आप भी ज्वाइन करें. सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10.